लाख आए मुसीबत तो परवाह नहीं, लाख टूटे सितम उसका शिकवा नहीं, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम, चाहे

काम है आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल जलालुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।

छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर के वतन, हे जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, असल हिजरत नहीं सिर्फ तर के वतन, लज्जते जिक्रे नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दशत ओ दामन। ये जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दे, इट इज नेसेसरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अप सिंस ऑल्सो। असली हिजरत नहीं सिर्फ तर्क के वतन, जस्ट लीविंग योर टाउन एंड गोइंग अवे टू अनदर टाउन, लीविंग योर कंट्री गोइंग टू अनदर कंट्री, लीविंग सिटी गोइंग टू अनदर सिटी एंड से वी मेड हिजरत, दैट इज नॉट सफिशियंट हिजरत, इट इज नेसेसरी दैट यू मेक हिजरत फ्रॉम सिंस ऑल्सो। बिल यकीन पाएगा निस्बते औलिया, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन, बिल यकीन पाएगा निस्बते औलिया, जिसके दिल को लगी है खुदा से लगन, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दशत ओ दमन, शहरे महबूब होगा जहां भी कहीं, शहरे महबूब होगा जहां भी कहीं, आशिकों का सुना है वही है वतन।

वतन में मगर दिल मदीने में है, हैं वतन में मगर दिल मदीने में है। ऐ मदीना फिदा तुझ पे हो सद वतन, हैं वतन में मगर दिल मदीने में है, हैं वतन में मगर दिल मदीने में है। ऐ मदीना फिदा तुझ पे हो सद वतन, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दशत ओ दमन। नेक लोगों में हो साहिबे दर्दे दिल, नेक लोगों में हो साहिबे दर्दे दिल। हे चमन में कोई जैसे रश के चमन, लज्जते जिक्र नामे खुदा है चमन, और गफलत की दुनिया है दश्तो दमन। रोजो शब है ये अख्तर की आहो फुगां, रोजो शब है ये अख्तर की आहो फुगां। बख्श दे रोजे महशर मुझे जुल्मिनन, रोजो शब है ये यूनुस की आहो फुगां, रोजो शब है ये यूनुस की आहो फुगां। बख्श दे रोजे महशर मुझे जुल्मिनन। Day and night, this is my plea to Allah Tabaraka wa Ta'ala, says Hazrat Maulana Akhtar Sahab Damat Barakatuhum. And we should also make the same plea to Allah Ta'ala, that on the day of Qiyamah, He must forgive us. He must not question us. He must not take hisab from us. He must not ask us to give any kind of account. Otherwise, we will be doomed. May Allah Ta'ala protect us all.

मिटा दे अपनी हस्ती को, छोड़ सारी मस्ती को। मिटा दे अपनी हस्ती को, छोड़ दे सारी मस्ती को। बस्ती बस्ती

घर से पुरखता है पर कहाँ जाए तेरा बंदा। घर से पुरखता है पर कहाँ जाए तेरा बंदा। तेरे दर पर तेरा बंदा ब उम्मीद करम आया। ओ अल्लाह, वी एक्नॉलेज दैट वी आर द मोस्ट सिनफुल सर्वेंट्स ऑफ योर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बट वेयर डू वी गो, विच आर द डोर्स देयर दैट वी कैन टैप, हु एल्स इज देयर टुवर्ड्स हुम वी कैन टर्न। तेरे दर पर तेरा बंदा ब उम्मीद करम आया। We have come, my beloved Allah, to your door. We are tapping at your door with great hope, with great ummeed. Ghar che pur khata hai par kahan jaye tera banda। तेरे दर पर तेरा बंदा व उम्मीदे करम आया।

जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। अल्लाह अल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है।